0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7 a.m.
2: City FM 89.
3: Coming up next.
4: The Breakfast Show with Shermaine.
5: City FM 89.
6: Trending today.
7: Blackpink K-pop star Jisoo has officially unveiled her new solo single titled Click, alongside a captivating official music video directed by Joseph Kahn. The track is up on all platforms.
8: This show is brought to you by Jazz.
9: City FM 89.
8: This show is brought to you by.
10: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
9: City FM 89.
11: चिकन पॉक्स याद है? ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
10: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.

0: Boost your song. Only on City FM 89.
1: It's 8 a.m.
2: City FM 89.
3: Trending today.
4: Blackpink K-pop star Jisoo has officially unveiled her new solo single titled Click. Alongside a captivating official music video directed by Joseph Kahn, the track is up on all platforms.
5: This show is brought to you by Jazz.
6: City FM 89.
7: This show is brought to you by.
8: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
6: City FM 89.
9: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
10: शौकत खानम कराची की तकमील.
11: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
12: अटेंशन फ्यूचर स्टूडेंट्स, दिस इज योर बोर्डिंग कॉल. योर फ्यूचर इज नाउ बोर्डिंग.
13: Your dream destination could be just one decision away. Meet international universities, explore scholarship opportunities, discover courses, and get expert guidance for your study abroad journey.
14: All at the 5th AEO Study Abroad Expo.
12: Boarding now in Lahore, September 7th, Pearl Continental Hotel. Next stop, Islamabad, 10th September, Marriott Hotel. Karachi, you're next, 12th September, Marriott Hotel, Gujranwala. 9th September, AEO Office, Faisalabad. 10th September, AEO Office, Multan. September 12th, AEO Office, Abbottabad. September 12th, Hotel 1, Peshawar. September 13th, Serena Hotel, Hyderabad. September 13th, Indus Hotel.
13: Register now at aeo.com.pk.
15: जहाँ पाँच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पाँच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पाँच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
3: City FM 89.
1: We are playing your song.
6: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by
4: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: سٹی ایف ایم 89.
6: اٹینشن فیوچر اسٹوڈنٹس, دس از یور بورڈنگ کال. یور فیوچر از ناؤ بورڈنگ.
7: Your dream destination could be just one decision away. Meet international universities, explore scholarship opportunities, discover courses and get expert guidance for your study abroad journey.
8: All at the 5th AEO Study Abroad Expo.
6: Boarding now in Lahore, September 7th, Pearl Continental Hotel. Next stop, Islamabad, 10th September, Marriott Hotel. Karachi, you're next, 12th September, Marriott Hotel, Gujranwala. 9th September, AEO Office, Faisalabad. 10th September, AEO Office, Multan. September 12th, AEO Office, Abbottabad. September 12th, Hotel 1, Peshawar. September 13th, Serena Hotel, Hyderabad. September 13th, Indus Hotel.
7: Register now at aeo.com.pk.
9: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G.
10: चिकन पॉक्स याद है? ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है, कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
4: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
11: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहां जा रही हो?
12: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है. आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है.
11: बैंक जाने की क्या जरूरत है?
13: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें. ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार. इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें.
14: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा.
2: यू आर लिस्निंग टू सिटी FM 89.
15: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 p.m.
1: City FM 89.
3: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
4: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
5: You're listening to City FM 89.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: चिकन पॉक्स याद है, ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें।
4: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें। खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो। ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है। मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें।
0: We are
2: City FM 89.
5: Pakistan, for the first time, experience Ali Noor in an exclusive live concert series across Pakistan. From the timeless anthems that defined a generation to the music that continues to inspire millions. The Surrender Tour is an intimate celebration of Ali Noor's extraordinary musical journey. Expect an unforgettable night featuring iconic classics, powerful storytelling, and an immersive live performance unlike any other. Happening on 27th September at the Arts Council Karachi. Get your tickets from Ticketwala. City FM 89 exclusive radio partners.
0: City FM 89. You're listening to
2: Non-Stop Hits.
6: No talk.
7: No talk.
8: No talk.
7: No talk.
6: Just you,
7: and the music.
6: Back to back starts now. Tonight

0: किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
1: City FM 89.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Blackpink K-pop star Jisoo has officially unveiled her new solo single titled Click. Alongside a captivating official music video directed by Joseph Kahn, the track is up on all platforms.
1: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
1: City
0: FM
1: 89.
7: This show is brought to you by AEO Pakistan.
1: City
0: FM
1: 89.
8: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
9: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
10: Aaj hi donate karne ke liye 0800-11555 par call karein ya hamari website www.shaukatkhanum.org.pk visit karein.
11: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
12: चिकन पॉक्स याद है ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है कभी सोचा भी नहीं था तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें
13: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें
4: सिटी एफएम 89
1: यू आर लिसनिंग टू

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
5: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
6: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
5: फुली बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना।
6: इन्वेस्ट पार्क?
7: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
6: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
0: City FM 89. We're playing your song. Wow.
1: You're listening to
8: The Rush Hour with ABD.
9: No matter what, you got

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 PM.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Blackpink K-pop star Jisoo has officially unveiled her new solo single titled Click. Alongside a captivating official music video directed by Joseph Kahn, the track is up on all platforms.
3: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
1: City FM 89.
7: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
8: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
9: Aaj hi donate karne ke liye 0800-11555 par call karein ya hamari website www.shaukatkhanum.org.pk visit karein.
10: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
11: चिकन पॉक्स याद है, ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
12: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज GSK पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
4: You are listening to City FM 89.
2: We are playing your song.
1: You're listening to

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
3: सिटी FM 89।
4: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G
1: सिटी FM 89
5: योर ड्राइव अलोंग कंपेनियन।
1: You're listening to
6: Future Sounds.
5: Future Sounds.
6: Vibe with us, your music.
7: Discovery for the latest jams and hidden gems.

0: the perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
1: City FM
0: 89.
1: Follow us on Instagram at CityFM89
3: for your infinite scrolling wheel fix.
4: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
5: Hold on, special delivery coming through.
6: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
7: We're now live on WhatsApp.
8: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
7: It's as easy as 03142-898989.
6: Save our number now and WhatsApp us.
9: City FM 89, we're playing your song.
10: Everybody go.
11: Mornings evolve, and so do we.
12: City FM 89's breakfast show is the best morning companion you can have.
13: Hello, hello, hello. It's me, RJ Shermin, your host on The Breakfast Show.
11: The freshest music, the hottest gossip.
12: And the energy Gen Z lives on.
11: It's bold, it's current, it's your morning routine.
12: The Breakfast Show.
11: Only on City FM 89.
14: Don't adjust your dial.
15: This is
16: City FM 89.
12: You're listening to
15: Future Sounds.
16: Future Sounds.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: Trending today.
6: Blackpink K-pop star Jisoo has officially unveiled her new solo single titled Click, alongside a captivating official music video directed by Joseph Kahn. The track is up on all platforms.
7: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
8: 89
9: You're listening to
10: Future Sounds.
8: Future Songs.
11: Vibe with us, your music.
12: Discovery for the latest jams and hidden gems.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
2: City FM 89
3: on the dial.
4: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
0: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
5: A new era begins.
6: City FM 89.
7: You got me going crazy.
8: You're listening to
9: Future Sounds.
10: Future Sounds.
11: Stay fresh, stay lit.
12: New music drops right here.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
3: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
4: यू आर लिसनिंग टू सिटी FM 89।
5: Mornings evolve, and so do we.
6: City FM 89's breakfast show is the best morning companion you can have.
7: Hello, hello, hello. It's me, RJ Shermin, your host on The Breakfast Show.
5: The freshest music, the hottest gossip.
6: And the energy Gen Z lives on.
5: It's bold, it's current, it's your morning routine.
6: The Breakfast Show.
5: Only on City FM 89.
8: City FM 89, we're playing your song.
6: You're listening to
9: Future Sounds.
10: Future Sounds.